0: या ब्रोकर्स हैं जो आपको रूम दिलवाते हैं वो हैरेस करते हैं। फिर अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ का जो पानी का है, पानी बहुत ख़राब है, कभी कभी 5 दिन 6 दिन तक पानी नहीं आता। और पानी जो आते हैं वो बाथरूम मतलब सीवेज लेवल के आते हैं, वो ग्रे वाटर आते हैं जिसमें मतलब जो मैन के जो एक्सक्रीटाज होते हैं वो मिलकर आते हैं। ऐसी इस हालत में हम रहते हैं।
1: जो भी सरकार ब्यूरोक्रेसी में मैम आती हैं वो चेक करती हैं क्लीनिनेस। अरे तो मैम रोड के क्लीनिनेस से कुछ नहीं होता ना, आपको बिल्डिंग्स में भी देखने चाहिए कि आपके स्टेयर्स कैसे। मैम स्टेयर्स भी इनके इतने स्मॉल हैं कि हम उस पर चढ़ते हैं 4th फ्लोर पे वो रूम देते विदाउट लिफ्ट। लिफ्ट तो चलिए छोड़िए, जो ओनर्स के मैम रूम हैं वो सारे वेल फर्निश्ड हैं और सबसे अच्छे हैं।
2: As for the aspirants, the new problem now is that of accommodation of the places that they live in. So the government will have to answer questions about the old dilapidated buildings that are present over here and are posing as PGs.
3: Switching tracks now to Prime Minister Modi's visit today. He will be in Gujarat. He's said to have a stronger youth focus as far as the agenda of this visit is concerned. With Vadodara getting up for a major interaction with the youth and the young here in India, there will be a visit to the MSU University. The Prime Minister will be engaging with students and young professionals, and seats for the event reportedly sold out within an hour. The scale of the preparation is also striking, with a special Y-shaped ramp and a high production setup involving 4K cameras. In Vadodara, there are going to be projects that are going to be launched. We're talking about the inauguration of projects to the tune of 35,000 crore rupees. The Prime Minister will also be focusing on connectivity. This basically means that railroads and freight connectivity is now in focus. And as far as, you know, getting that new BJP office, that is also set to be inaugurated today. Then from Gujarat, the Prime Minister is going to be in Maharashtra and Mumbai. The Prime Minister will open the Global FinTech Fest, bringing FinTech as well as technology, AI and the future of digital finance, and all that is going to be the focus of the visit of the Prime Minister. He will be in Mumbai today.
4: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है वडोदरा शहर में, और जिस जगह पर ये कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर NDTV आ पहुँचा है। और बहुत ही खास ये प्रोग्राम होने वाला है, जो आम जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम होते हैं वैसा ये प्रोग्राम नहीं होगा। किस तरीके से, किस लिहाज से ये पूरा कार्यक्रम खास रहेगा ये पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप देखें कि ये स्टेज है, किस तरीके से इस स्टेज से ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन उसके बाद जो होगा, आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि ये पूरा एक रैंप बनाया गया है। अब ये देखिए, ये सीढ़ियों के सहारे यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना लंबा ये पूरा रैंप बना हुआ है। तस्वीरों में आप देखें कि जहाँ तक ये पूरा डोम गया हुआ है वहाँ तक ये पूरा रैंप गया हुआ है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम होते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड लोग रहे, जिन्होंने बुकिंग करके यहाँ पर आने के लिए अपनी टिकट्स और रजिस्ट्रेशन कराया है, सिर्फ उनको ही यहाँ पर आने की परमिशन रहेगी। यानी कि देखिए, ये सरकारी कार्यक्रम है लेकिन एक ऐप के थ्रू लोगों को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना था, और उन सिलेक्टेड लोगों को ही जिन्होंने खुद इच्छुक होके वहाँ पर रजिस्टर कराया है उनको ही इस कार्यक्रम में आने की अनुमति है।
5: देश के सर्व अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब 35,000 करोड़ रुपए की विकास की भेंट लेके वडोदरा पधार रहे हैं, वडोदरा शहर एवं आसपास के लोगों ने मिलके ये कार्यक्रम को जैसे विकास संकल्प के रूप में मनाने का तय कर लिया है। नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में आज तक पहली बार शायद ऐसा हो रहा हो, मोदी जी का कार्यक्रम है। ऑनलाइन सीट बुक करनी है, सीट ओपन होते ही 1 घंटे में पूरा हाउसफुल हो गया।
3: And staying with news from Maharashtra, we are talking about Prime Minister Modi, who will be visiting Mumbai today. But a case now has been registered, an FIR, over supercar racing that was caught on camera. There was a person who recorded this video and put it online, and it has gained traction, which has led to the police now taking action. 6 to 7 cars were spotted speeding inside this tunnel without maintaining proper discipline. these cars included BMWs as well as Lamborghinis, as you can see in the video. Street racing, that's not allowed in Mumbai. The Budh International Circuit is the only Formula One circuit in India and holds a monthly open track day where any car and bike owner can come and drive. In fact, this video was recorded on the night of the 3rd of September. This is a very important tunnel. This is a southbound coastal road near Marine Drive. Sujata, my colleague, joining us in order to get us details. Sujata, this was obviously happening very late at night because a passerby has, you know, managed to record that video, put it online, put it on social media platforms, and which is why now action is being taken by authorities and FIR has now been registered.
6: Absolutely, Divya, and such instances of such sports car racing on the coastal road is not new, whereas this time the police has finally taken cognizance of the case and registered an FIR into it. Now, an individual named Sana Khan has recorded this video while she was traveling with her family, and she's been ever since she has recorded the video, she said that this was terrifying. The kind of speed in which these cars were racing in the tunnel of the coastal road was quite scary. And also, if we see in the video, it can be seen that it is a tunnel of the coastal road, and usually because of high speeding there has been accidents that have taken place, and there are CCTVs too that have been put up in the coastal road to identify such cars. The police have registered the FIR to take further action onto these people. And let me also tell you that the entire racing track starts from the Bandra Worli ceiling, from its start from Bandra, and it goes up till until it reaches Nariman Point, because the entire road happens to be smooth and these cars, they can drive at a speed of 120 km per hour, reason being we see such speed taking place, but this speed is even higher, and the lane in which they are driving is a bus lane, and even a single car driving in that lane has to face fine. But in this case, they could also be seen over speeding with their vehicles, and reason being action will be taken accordingly. Over to you, Divya.
3: Right, Sujata, thank you so much for getting us those details. We will keep tracking that case. Moving on now to politics over non-vegetarian food that has erupted in the state of West Bengal. This is ahead of Durga Puja celebrations. The Hindu seer, Dharendra Shastri, also known as Baba Bageshwar, has called for meat shops and liquor shops to be shut during the Durga Puja festivities, urging the government of West Bengal to convey his message. But the demand has triggered a political pushback. We have the BJP chief in West Bengal who has distanced the party from the remarks that have been made by the seer, saying food choices are a matter of personal concern and cannot be decided by any Baba or any seer. The TMC too has hit out, questioning whether an outsider can decide basically what people in Bengal should be eating. Then we have Adhir Ranjan Chaudhary of the Congress, who has also taken a dig, saying that the BJP and the RSS cannot be controlling choices that are made by people when it comes to food.
7: कौन कौन चाहता कि नॉन वेज बंद हो, पक्का अपने अपने मोबाइल की लाइट जलाओ ताकि पता लगे कौन कौन इस बात के समर्थन में हैं, और पूरे पश्चिम बंगाल में ये बात पहुंचे और यहां की सरकार के पास भी ये बात पहुंचे, कौन कौन चाहता कि दुर्गा पूजा में मांस मदिरा की दुकानें बंद हो जाएं पश्चिम बंगाल में।
8: ईश्वर बाबा पश्चिम बंगाल में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये बोलने का विषय शायद उसका नहीं है, वो बोल ही सकते हैं। आज तो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, जो सारे लोग वेजिटेरियन बन जाओ, कोई तो वेगन बन गया, ये तो चलते हैं दुनिया भर में। अब भी अपील कर दीजिए जो सब मटन खाने के लिए निकल पड़े, ये तो अकबर का विषय है। एक संत होने का नाते ऐसा वो बोल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे कोई ठीक कर देगा ऐसा नहीं है। और आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बागेश्वर बाबा भारतीय जनता पार्टी का अपने कोई हमारा ऊपर भी कोई पोस्ट में लेकर बैठ गया।
9: तो बागेश्वर बाबा के बारे में जानता नहीं हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बाहर से आके कोई बाबा सब ठीक कर देंगे तो बंगाल के लोगों का आजादी क्या है। लोग जैसे चाहते हैं कमिटी वैसे ही पूजा करेंगे, नियम पालन करके ही करेंगे, इसमें बागेश्वर बाबा कहाँ से आए।
3: Let's just also switch tracks and get you the very latest in regard to what's coming up after this very, very short break. Pakistani Air Force has released an AI-generated video claiming strikes on 32 AIF. These are Indian Air Force bases and 8 aircrafts during Operation Sindoor. All claims that are being made, all AI-generated.
10: He has tracked the pulse of power.

0: Taranjit Singh Sandhu has chaired a meeting with Chief Minister Rekha Gupta, while the Chief Secretary, the NDRF Chief, the MCD Commissioner, Delhi Police Chief and other officials were present. He has directed the Chief Secretary to complete structural audits of buildings in PG hubs within a week, with unauthorized construction and safety violations under scrutiny. So the question now is what these audits will actually uncover and what happens to buildings that are found unsafe.
1: हमारी टीम और बाकी सारी एजेंसीज एनडीआरएफ सब ने कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इसमें एफआईआर रजिस्टर करी गई क्योंकि उसमें कुछ बच्चों की दुखद मृत्यु भी हुई है. उसमें तीन लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट कर लिया है, जिसमें उर्मिला जो ओनर हैं इस पीजी की जिनके नाम पे था ये, उनके हस्बैंड हरिराम गुप्ता जो है वो उनके नाम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, और महेश जो है उनके बेटे जो उनके साथ इस पीजी को पूरा ऑपरेट करते थे. तो 24 घंटे ये ऑपरेशन पूरा चला है. उसमें 12 लोगों को रेस्क्यू करा गया, जिसमें से अभी 7 लोग की डेथ हो गई है.
2: जो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में विद्यार्थी दिल्ली के विभिन्न कॉलेजेस में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों, आई दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हों, उनमें जो एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज का गैप है उसको पूरा करने के लिए FAR में ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए FAR में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना, PG और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो जस्टिस गुआबा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी की रिपोर्ट बन रही है, PGs को रेगुलेट करना, इन सब विषयों पर सब विभागों के साथ चर्चा हुई है. इसको इम्प्लीमेंट करने का काम दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग करेंगे.
3: जैसे हम मुंबई में भी बारिश के पहले कौन सी इमारतें ढहने को आई हैं तो उनको नोटिस जारी करते हैं. अब ऐसे तो नहीं ना कि कोई भाई भूकंप हुआ और इमारत गिर ढह गई, तो ढह गई क्यों? अब 7 बच्चे मन जाने के बाद में मैं दिल्ली वालों को पूछता हूं, इन्होंने आपको क्या क्या जबान दी है, वचन दिए हैं? जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है? क्या दिल्ली वालों जी लोगों का जीवन सुरक्षित? एक बारिश आती है तो भय जाते हो.
0: Well, the collapse of this multi-story paying guest accommodation in Satyaniketan has once again exposed the risks posed by unauthorized construction and structural alterations in the national capital, while also raising questions about whether the civic machinery acted on warning signs before this building came down to absolute dust and ash. And as questions mount over safety and accountability, we now take you inside the narrow lanes of Satyaniketan. Padmaja Joshi brings you the voices from those narrow lanes. Listen in.
4: Let's take a look at what some of these PGs are like. Here you see the corridors, and there would be rooms on every side. Can I just speak to you for 1 second? And this is the architecture of most of the rooms here. When you spoke of a single bed being able to fit, this is what a room looks like. Sure, come. This is what a room looks like. You will have one bed. A single bed, which is just about 6 feet, that is what can fit inside this room. A small study table with a chair. A small wardrobe that has also been fit in. This I am assuming is one of the more luxurious, if you can use this word. It's a single room. How much do you pay for it?
5: I pay
4: 19,000. 19,000 for this one room, where you've got this small wardrobe, another wardrobe here where you can fit some of your clothes, and I think the luxury of a single...
5: Yeah, I just have to, this wardrobe, not everyone has to do it.
4: Okay, so a bathroom which you don't have to share with anyone. This also is just about a 6 feet by 2 feet washroom, which is not shared in this case. Like this young lady told us, she was lucky enough that she got 2 wardrobes for 19,000, a rent of 19,000, and access to a small balcony. She doesn't want to show her face naturally because parents are worried at this time.
6: For me, what I have seen in other PGs, when I was searching for PGs, this is one of the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: CPI for their comment as well. Thank you so much, Mr. Narayanan, for joining us on behalf of the TVK this morning. Kani Mori has sharply criticized Vijay's remarks on the emergency, calling them the lowest of the low, adding that when questions are raised in the legislature, those in power have a responsibility to answer them. Listen in to her remarks.
1: Missa emergency kochapaduthuraaru நாடு முழுவதும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை நாடு முழுவதும் அதை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்காக போராடி எத்தனை பேர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர்கள் எத்தனை பேர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க இதில் வரலாறு தெரிய வேண்டும் கேள்வி சட்டமன்றத்தில் கேட்கப்பட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க அதை புரிஞ்சுக்காம மற்றவங்க மேலே குற்றம் சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கை அப்படின்னு அதை கேலி கூத்தாக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் டுடே தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு விஜய் அவர்களுடைய பேச்சு வந்து இட் டச்ட் தி லோவஸ்ட் ஆஃப் தி லோ
0: On that note, let's turn our attention now to the national capital. 7 people have died in the Satyaniketan building collapse, and the focus this morning is widening from the rubble to the buildings around it. You must note that the MCD has moved against structures in the area. The building immediately adjacent to the one that collapsed has now been demolished in phases after an MCD notice, while several other buildings nearby have been sealed as well. The adjoining structure had been supported by around 18 to 20 guardrails across the front, the back and the center. Meanwhile, the alleged owner, Hariram, his wife and his son, have been arrested with their links to the property under scrutiny. Meanwhile, you must note that these are the three members of the family that have been interrogated. Hariram Gupta, his wife Urmila Gupta have been sent to 14 days judicial custody, while their son Mahesh Gupta has been remanded to 2 days police custody. These arrests are only one part of the investigation though. The Delhi High Court has ordered a high-level inquiry into this collapse and asked the MCD to establish whether the building had valid approvals and whether it conformed to the sanction plan. The court also sought details of PG accommodations across Delhi and questioned the authorities over the shortage of hostel facilities for students. Here's how the police is reacting. Listen in, followed by a reaction from the Delhi government too.
2: हमारी टीम और बाकी सारी एजेंसीज एनडीआरएफ सब ने कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया इसमें एफआईआर रजिस्टर करी गई क्योंकि उसमें कुछ बच्चों की दुखद मृत्यु भी हुई है उसमें तीन लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट कर लिया है जिसमें उर्मिला जो ओनर हैं इस पीजी की जिनके नाम पे था ये उनके हस्बैंड हरिराम गुप्ता जो है वो उनके नाम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था और महेश जो है उनके बेटे जो उनके साथ इस पीजी को पूरा ऑपरेट करते थे तो 24 घंटे ये ऑपरेशन पूरा चला है उसमें 12 लोगों को रेस्क्यू करा गया जिसमें से अभी 7 लोग की डेथ हो गई है
3: जो बड़ी तादाद में लाखों की तादाद में विद्यार्थी दिल्ली के विभिन्न कॉलेजेस में चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों आई दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हों उनमें जो एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज का गैप है उसको पूरा करने के लिए FAR में ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए FAR में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना PG और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो जस्टिस गुआबा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी की रिपोर्ट बन रही है PGs को रेगुलेट करना इन सब विषयों पर सब विभागों के साथ चर्चा हुई है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग करेंगे
4: जैसे हम मुंबई में भी बारिश के पहले कौन सी इमारतें ढहने को आई हैं तो उनको नोटिस जारी करते हैं अब ऐसे तो नहीं ना कि कोई भाई भूकंप हुआ और इमारत गिर ढह गई तो ढह गई क्यों अब 7 बच्चे मन जाने के बाद में मैं दिल्ली वालों को पूछता हूं इन्होंने आपको क्या क्या जबान दी है वचन दिए हैं जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है क्या दिल्ली वालों जी लोगों का जीवन सुरक्षित एक बारिश आती है तो भय जाते हो
0: Well, this collapse of this multi-story paying guest accommodation in Delhi Satyaniketan has once again exposed the risks posed by unauthorized construction and structural alterations in the national capital, while also raising questions about whether the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. New rules of engagement. Ambitions crossing borders.

0: All right, BJP MP and actor Kangana Ranaut has spoken out against the targeting and character assassination of women in remarks that appear to refer to the recent controversy involving Tamil actor Trisha. Without naming Trisha, Kangana Ranaut says that when a woman is successful, powerful, or in a position of authority, attacks on her character are often used to bring her down. Referring to the Tamil Nadu controversy, she said that the relationship in question involved both parties, but that the woman was being subjected to abuse and character assassination. Listen in to what the BJP MP has said regarding character assassination of women in her latest remarks.
1: ये हम सब जानते हैं, ये किसी भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है। चाहे वो महिला काम करने वाली हो, या वो सफल हो, या वो नेत्री हो, या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है, हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है। और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहां पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार, अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है, जिस तरह से भी, वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है। तो इस तरह की जो है, ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है, ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है, कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं।
0: My colleague Vijay Gopal Mulidharan is tracking the latest details for us. He joins us live at the moment to decode Kangana Ranaut's remarks. Vijay, Kangana Ranaut has not named Trisha. What makes it clear that her reference is to

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।

0: रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾ ਸਕੀਏ।
1: ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬੁੱਧ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੜਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਫਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਫਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ।
2: ਯਾਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
3: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੜਬੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਰਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਯੂਮੀਲੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ।
4: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸੇ ਪੂਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਮੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਬਿਕ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੇ ਬਜਾਏ, ਚਿੱਟਾ ਰੋਕਣੇ ਕੇ ਬਜਾਏ, ਡਰੱਗ ਰੋਕਣੇ ਕੇ ਬਜਾਏ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੂਛਾ ਉਸਕੇ ਘਰ ਪਰ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਕੋ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਆ। ਇਸਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਕੋ ਇਤਨਾ ਹਰਾਸ ਕੀਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਥਾ, ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾ, ਉਸਕੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਕਿ ਵੋ ਲੋਗੋ ਕੋ ਡਰਾ ਸਕੇ ਵੋਟ ਕੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੋ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇ ਪੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਸਕੋ ਹਰਾਸ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਸੇ ਉਨਕੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦੀ ਬਿਗੈਸਟ ਆਪਦਾ ਫੋਰ ਪੰਜਾਬ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਬਚਾਨਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਹਟਾਨਾ ਹੈ।
5: And all of this is happening before elections coming up in the state of Punjab. To know more on this, Gurpreet, my colleague joining us. Gurpreet, a 50-year-old man from Sangarur, he died by suicide. He consumed pesticide, but after he did that, he managed to speak on camera. He clearly was heard blaming the minister Chima for his death.
6: Well, that is the demand of the opposition leader. They say immediately action should be taken against Punjab Finance Minister. Right now, we are reporting in front of the mortuary in Civil Hospital, Sangarur, where we are showing huge force has been deployed here. One of the Akali leader, he is with us because he was also present there. He recorded the last statement of Gulzar Singh, in which he alleged that there was a role of Punjab Finance Minister Harpal Singh, and he demanded immediate action should be taken against the Panchayat Sarpanch along with three other person including Punjab Finance Minister Harpal Singh Chima. We will talk to this Akali leader to just understand what is their demand and how this whole incident had taken place. So how did it happen? Aap wahan pe the us time pe?
7: The thing is ke Mr. Gulzar Singh, who belongs to Tur Banjara village, he just questioned to Finance Minister Punjab. He said that my son is just taking a the chitta, which we call the smack and chitta. And he said to finance minister that please just control this thing, and after that the people from those village, and that just they pressurized him and tell them just to say sorry to finance minister because you raised the question in our area. This is the district of CM Bhagwant Mann, this is the district of finance minister, this is the district of Punjab President Aman Arora. It happened last week also when Mohanji Sheron, a young Sikh guy who just raised a flag in the function of Bhagwant Mann, and he tortured a lot. And this guy,
6: recently we talked to the DSP. She says we are taking action. FIR has been registered against those.
4: उसने
8: ड्रग्स का जो व्यापार,
4: जो समस्या पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाक के नीचे चल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस मुद्दे को गुलजार सिंह ने जिला संगरूर में रहने वाले थे, पापी आपके मंत्री हरपाल सिंह चीमा, ये जब गुलजार सिंह के गांव में जाते हैं, वहां वो चीख चीख कर मंत्री से कहता है, मेरा बेटा चिट्टा ले रहा है ड्रग्स, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पंजाब के युवाओं को बचा लीजिए, ये गुहार लगाता है गुलजार सिंह मंत्री हरपाल सिंह चीमा से। लेकिन ये बात एक नागरिक उठा रहा है जिस पापी आप सरकार की जिम्मेदारी है कि ड्रग्स का खात्मा हो, वहां पर एक अराजक जंगल राज वाली सरकार क्या करती है। जब मैं आपसे साझा करूंगा, आप भी व्यथित होंगे, आपको भी पीड़ा होगी। मैं पुनः कहूंगा, मंत्री हरपाल सिंह चीमा जिला संगरूर जाते हैं, वहां पे गुलजार सिंह हमारा दलित भाई गुहार लगाता है मंत्री से कि मेरा बेटा चिट्ठा ले रहा है, उसे आदत हो गई है नशे की, इस पे रोक लगे, कार्रवाई हो, पंजाब के युवाओं को बचाया जाए। वो ये भी बताता है कि ये आदत ऐसी है कि उसने जो उसके घर में कीमती वस्तुएं हैं उन सबको बेच दिया इलाज के लिए,
8: वो सड़क पर आ
4: गया है और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। दुखद और गंभीर इसलिए है, आपके नेता जो सरपंच हैं, मंत्री के जाने के बाद कार्रवाई नहीं करते हैं, वो गुलजार सिंह के घर जाते हैं, उसको धमकी दी जाती है, उसको डराया जाता है, उससे कहा जाता है तुमने अपशब्द कहे, मंत्री से माफी मांगो। और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि गुलजार सिंह जहर खा लेता है, सेल्फोस ले लेता है। जब वो जहर खाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विधिक तौर पे भी, जिसको मैं आगे आपके समक्ष रखूंगा, गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ ड्रग्स
9: चिट्टा युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है और 7 तारीख को यानी कल हमारा भाई गुलजार सिंह दम तोड़ देता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जिसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए चलाया जाए और फिर उसके बाद हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो वीडियो आपने देखा, ये तस्वीर है हमारे भाई गुलजार सिंह की, और प्रमुखता से जो बात आई उसका हिंदी में अनुवाद है, मैं पढ़ देता हूं। पीड़ित पिता कहता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, कल चीमा हमारे यहां आया था, मैंने चीमा से सवाल किया था, ये चीमा भी जिम्मेदार है जो मेरी मौत का जिम्मेदार है, पंचायत का सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेदार है जी। पहला बिंदु, मंत्री जिसका कार्य होता है, मुख्यमंत्री भगवंत मान जिनका काम है ये ड्रग को रोके, पंजाब को ड्रग मुक्त प्रदेश करें, तो ये पापी आपकी सरकार अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और मंत्री हरपाल सिंह चीमा कह रहे पंजाब ड्रग युक्त रहेगा, नशा युक्त रहेगा। जैसे भगवंत मान नशे के पर्याय बन चुके हैं, हम हमेशा कहते हैं सूर्य अस्त भगवंत मान मस्त, और जो व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना करे, जिसको आम जनता की चिंता ना हो, जो शाम को खुद नशा करे, वो पंजाब को नशा मुक्त क्या करेगा। आगे दूसरी बात, सवाल पूछता है व्यक्ति गुलजार सिंह से, पत्रकार, आपने उससे क्या सवाल किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नागरिक अपने हक का प्रयोग करके सवाल पूछता है मंत्री से। पीड़ित पिता कहता है, मैंने चिट्टे के बारे में सवाल किया था जी, ये वीडियो में है। तीसरा, आपने चिट्टे के बारे में क्यों पूछा, क्या आपके घर में कोई चिट्टा पीता है। पीड़ित पिता कहता है दर्द भरी आवाज में, हां जी मेरा बेटा पीता है। तीन प्रमुख बातें, और चौथी, जब सवाल पूछता है पत्रकार, सरकार तो कहती है कि उन्होंने चिट्टा बंद करवा दिया है, तो पीड़ित पिता कहता है चिट्टा बिल्कुल बंद नहीं हुआ है जी, मैं खुलेआम कहता हूं कि मेरा बेटा चिट्टा पीता है जी, मैंने चीमा से सवाल किया था, वहां पता है क्या, राज सरपंच एक विक्की और एक और मान लो राज सरपंच और गोंडा, ये चार लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं जी, ये मुझे घूर कर धमकाते हैं और आज मुझे बेइज्जत करने लगे, कहते हैं कि मुझसे माफी मांग, क्या मैं माफी मांगू, ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है क्योंकि उसका बेटा चिट्ठा ले रहा है, उसको धमकाया जाता है कि मंत्री से माफी मांगो, तुमने हिम्मत कैसे दिखाई कि सवाल पूछो, विफलता किसकी है, भगवंत मान की है, मंत्री हरपाल सिंह चीमा की है और अरविंद केजरीवाल की है, दिल्ली में दारू का नशा, पंजाब में चिट्टे का नशा, यह कैसा नशा है सत्ता का, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को शराब दूंगा, पंजाब को चिट्ठा दूंगा, मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, और हम लोग देखते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं, अभी कुछ माह पहले एक मामला और आया था चिट्ठे से जुड़ा हुआ, नशे से, एक मां जिसके 5 बेटे थे, 4 बेटों की मौत हो गई नशा लेने के कारण, उसका 5वां बेटा अस्पताल में जाता है पंजाब का ही, वो बेटा अस्पताल में होता है, मां विनती करती है भगवंत मान से, गुहार लगाती है, मेरे 5वें बेटे को बचा लो, बड़े दुख के साथ बता रहा हूं, वो 5वां बेटा भी अस्पताल में दम तोड़ देता है, उस मां के 5ों बेटे उनकी मौत हो जाती है नशे के कारण, क्या भगवंत मान एक शब्द बोल पाए, क्या संवेदनशीलता दिखा पाए, क्या ये जो ड्रग्स का खुला व्यापार हो रहा है उनकी नाक के नीचे, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, क्या वो इस पे कोई सख्त कार्रवाई कर पाए, उत्तर है नहीं। तो हम यहां से मांग करते हैं, पहला, भगवंत मान जब रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बने रहने का कोई हक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तुरंत इस्तीफा दे भगवंत मान। दूसरा, क्योंकि हमारा भाई एससी समाज से आता था, क्या आपने ठोस कार्रवाई करी है, एससी एसटी एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बीएनएस धारा 108 में 10 साल की सजा है, क्या एफआईआर रजिस्टर हुई और उसमें यह धारा जोड़ी गई, एससी एसटी एक्ट का प्रावधान क्या उसमें है। तीसरा, क्या आपने अपने मंत्री हरपाल सिंह चीमा को बर्खास्त किया है, और यह मैं क्यों कहता हूं, ये जो वीडियो हमने देखा यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, इन लॉ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, जो व्यक्ति दम तोड़ रहा हो वो जब खुद अपना वीडियो बना के किसी को जिम्मेदार बता रहा है, उसकी बहुत ही ज्यादा एविडेंट्री वैल्यू होती है, और अगर किसी मंत्री का नाम ले रहा है जो अभी भी मंत्री बना है तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। इसीलिए भगवंत मान जी को और मंत्री हरपाल सिंह चीमा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, यह हमारे भाई के परिवार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। और इसी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक मां 5 जिनके बच्चे थे 5ों की मौत हुई ड्रग्स से, एक और भाई मोहनजीत सिंह शेरो, इन्होंने भी कुछ दिन पहले पटियाला में आवाज उठाई, ये जो ड्रग्स का व्यापार चल रहा है उसको लेकर, ये उनकी तस्वीर है मेरे हाथ में।

2020 में कंप्लीट हुआ, कोविड आया, कोविड की प्रॉब्लम्स आई, फिर काम स्पीड पकड़ा और एक एक करके कई सेक्शन कंप्लीट हुए। आज दादरी से जेएनपीटी तक

मॉडर्नाइज किया जा रहा है। 100 साल पुरानी संस्था है, 100 से ज़्यादा साल पुरानी संस्था है, एक एक करके सिस्टमेटिकली इसको मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। और आपकी जनरेशन पहली जनरेशन है जिसने वंदे भारत में ट्रेवल किया है, और अब तो वंदे भारत स्लीपर भी एक के बाद एक आने लगी है, अमृत भारत, नमो भारत, और अब वंदे भारत की कार्गो ट्रेन्स भी बनने लगी है। 280 स्टेशंस का कंप्लीट रीडेवलपमेंट, नवनिर्माण कंप्लीट हुआ है। 36,000 किलोमीटर पटरियां नई बनी है दोस्तों, 36,000 किलोमीटर, और अब कवच भी इस्टेब्लिश हो गया है, सारी दुनिया उसको देख रही है। साथियों, हमारी जनरेशन ने जब देखा था श्रद्धेय अटल जी का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्ण चतुर्भुज, उससे हाईवे का एक टोटली नया स्वरूप आया था। आज वैसा ही बदलाव रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, जो रेलवे के 7 बड़े कॉरिडोर हैं। भारत का नक्शा दिमाग में लाइए, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उसकी, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली, ये हुआ स्वर्ण चतुर्भुज। अब इसकी डायगनल्स, दिल्ली से चेन्नई, मुंबई से कोलकाता, और उसके बाद में दिल्ली से गुवाहाटी, इन 7 कॉरिडोर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाइनिंग कर रहे हैं, 4 लाइनिंग, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, कई सारी नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे। और जिस तेजी से नई गाड़ियां चलने लगी है, जिस तेजी से काम चल रहा है, साथियों, जो आज कॉलेज में पढ़ने वाले युवा युवतियां हैं, आप जब कॉलेज से बाहर निकलोगे, आप देखोगे रेलवे का एक टोटली नया स्वरूप आपके सामने है। कंप्लीट इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे नेटवर्क का एक रूट है जो बड़ोदरा से रतलाम, आज इसकी 4 लाइनिंग का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से है। साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, रिजर्वेशन सिस्टम हो, और पुराने मैनुअल्स, कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था, इन सब को रिफॉर्म कर रहे हैं, इन सब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नई डिज़ाइन के वैगन बन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सॉल्ट के लिए एकदम स्पेशल डिज़ाइन माननीय प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से बनी है। आने वाले समय में जो भारतीय रेलवे का आधुनिक स्वरूप सामने आ रहा है, इसका लाभ आने वाली कई जनरेशन्स को मिलने वाला है। चेनाब का ब्रिज, आप सबने देखा फोटो उसका या वीडियो, चेनाब का ब्रिज मिजोरम को रेलवे से जोड़ना, कई ऐसे पुराने प्रोजेक्ट थे वो अब कंप्लीट हुए, और अब बुलेट ट्रेन का इंतज़ार भी जल्दी ख़त्म होगा। काम तेजी से चल रहा है, सूरत से वापी सेक्शन का कंस्ट्रक्शन इसी साल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, जो बुलेट भारत में बन रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से। उस ट्रेन का पहला बॉडी फ्रेम परसों बनकर स्क्वीज टेस्ट के लिए चला जा चुका है, और अगले साल मई जून तक भारत में बनी हुई भारत की बुलेट ट्रेन पटरियों पे आएगी टेस्टिंग के लिए। 2-3 महीने के टेस्टिंग के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। और जब बुलेट ट्रेन में बैठोगे ना बड़ौदा के दोस्तों, यहाँ से मुंबई 1.5 घंटे में पहुँच जाओगे। कितने में, कितने में, क्या भाई सुन रहे हो, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में बड़ोदरा से मुंबई। ये है आने वाले समय का रेलवे का आपके सामने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी उस भविष्य की नींव रख रहे हैं, उस फाउंडेशन को रख रहे हैं आज, जो आपकी जनरेशन को, भारत के भविष्य को, और आप सबके लिए एक नया भारत, एक उज्जवल भारत, एक ऐसा भारत जो 2047 तक विकसित भारत होगा, उस भारत की मजबूत नींव को रखने के लिए आज मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन और सशक्त नेतृत्व में आज देश और गुजरात के विकास को एक नई रफ्तार मिल रही है। आज गुजरात की पावन धरती वडोदरा से हमारे विकसित भारत के सपने को एक नई ताकत मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज गुजरात और पूरे देश को देने जा रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की अभूतपूर्व विकास कार्यों की सौगात। इस विकास प्रवाह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। 30,700 करोड़ से अधिक की लागत से आज भारतीय रेल के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास एवं लोकार्पण हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, जो देश के उद्योगों को बंदरगाहों से सीधे जोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, जिससे माल की तेज, सुगम और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को नई गति और नई क्षमता प्रदान करेगा। छोटा उदयपुर धार परियोजना के तहत जोबट टांडा रोड रेल खंड का उद्घाटन, जिससे आदिवासी क्षेत्र राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। साथ ही वडोदरा रतलाम मल्टी ट्रैकिंग, मियाँ गांव करजण चोरंदा मालसर लाइन और विश्वामित्री डभोई डबलिंग का शिलान्यास, और होने जा रहा है टांडा रोड वडोदरा ट्रेन सेवा के साथ 4 फ्रेट ट्रेनों का शुभारंभ। रफ्तार और सुविधा के इस सफर को नया विस्तार देगा नेशनल हाईवे नेटवर्क। 1780 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स के तहत NH 48 पर कामरेज चलथान 6 लेन, तापी और नर्मदा नदी पर नए आधुनिक पुल, NH 53 के 3 जंक्शनों पर नए फ्लाईओवर का शिलान्यास हो रहा है। और आम नागरिक की ईज ऑफ लिविंग हेतु गुजरात सरकार वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आई है 916 करोड़ से ज्यादा के जन सुविधा प्रोजेक्ट्स, 524 करोड़ के रिंग रोड फेज 2 और नए BMC भवन का शिलान्यास। बूढ़ा के 11 गांवों और आजवा भायली में शुद्ध पेयजल, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और 14,000 से अधिक परिवारों को उनके अपने पक्के घर की चाबी। सशक्त गुजरात के संकल्प को नई शक्ति देंगे ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के 580 करोड़ से अधिक के सोलर व ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, मार्ग एवं मकान विभाग के 390 करोड़ से ज्यादा के नए स्टेट हाईवेज व रिवर ब्रिजेस तथा पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक बस स्टेशन और उद्योग जल आपूर्ति के कई अन्य विकास कार्यों की शुरुआत हो रही है।

0: हमारे सेवावर्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में आज वडोदरा से देश की ग्रोथ स्टोरी को मिल रही है एक नई स्पीड और नया स्केल। विकसित भारत 2047 के विजन को समर्पित ये मेगा प्रोजेक्ट भारत को एक सशक्त और ग्लोबल पावर हाउस बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। वंदे मातरम, जय हिंद।
1: अब मैं करबद्ध निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं

अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे हरी झंडी दिखाकर टांडा रोड से वडोदरा के बीच नई यात्री ट्रेन एवं अन्य चार मालगाड़ियों का प्रस्थान कराएं।

0: All right, Prime Minister Narendra Modi about to inaugurate some very crucial projects there. You can see the Prime Minister showing the green flag to this important project that is being inaugurated right now. This is the freight corridor that is going to help the trade corridors between Gujarat, Maharashtra and several other states of India. Foundation for 9,700 crore worth of projects, 1,780 crores of national highway projects and major highway projects are on the card. So very important developments there. Earlier in the day, we had, of course, the Surat-Vapi section that is going to be expected to be completed by December this year. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav, also spoke in detail about this in Vadodara, about the railways modernization, which is for the younger generation. Ashwini Vaishnav said that the railway is in the process of modernization, especially the younger generation that is connected to us. And this is for our generation. This is the modernization of the railway, a very big milestone. So clearly, latest visuals coming in, and we are about to see Prime Minister Narendra Modi to speak up after these development projects. Let's cut in live.
1: Leader. भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने वाले नव भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सादर निवेदन, नम्र निवेदन प्रधानमंत्री जी से।
2: भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम श्रीमती सुनेत्रा पवार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और वहां पर भी इकट्ठे हुए लाखों नागरिक भाई बहन, यहां मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री, युवा नेता हर्ष संघवी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अने खास एटले माड़ा वडोदराना महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का ये मैदान अलग अलग फील्ड में काम करने वाले सभी साथियों का साथ और विकास का ये उत्सव, यहां सब कुछ एक साथ हो रहा है। साथियों, आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले यहां देश के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस विकास पर्व पर आप सभी ने जिस सेवा भाव से और सेवा भाव के साथ पूरे वडोदरा शहर में स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया है, इसके लिए मैं वडोदरा के हर एक नागरिक को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और ये जो आपने रंग दिखाया ना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, सीना चौड़ा हो गया, वाह क्या मेरा वडोदरा। और अब तो गणेशोत्सव की तैयारी, बाद में नवरात्रि, और गणेशोत्सव और नवरात्रि पूरा गुजरात का ध्यान वडोदरा पर होता है। और आज आपने, मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से हर परिवार में वातावरण बन गया स्वच्छता का। मुझे लगता है कि इस बार जब गणेश जी पधारेंगे ना, सारे आशीर्वाद वडोदरा पर बरसने वाले हैं। साथियों, इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो। वडोदरा तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी का शहर है। आज यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आखिरी कड़ियां भी जुड़ गई हैं। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था, यानी यहां मैं सारे नौजवान देख रहा हूं, जब इसका विचार शुरू हुआ आप में से बहुत लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय शुरू हुआ था। 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम करने के लिए, और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रही, फाइलें टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ, फाइलें अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी। और 2014 में वडोदरा के और गुजरात के और देश के लोगों ने मुझे गुजरात से निकाल करके दिल्ली भेज दिया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद 3-4 पीढ़ियां आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। साथियों, 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया। और आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। पहले पैसेंजर ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती थी उसी ट्रैक पर मालगाड़ी भी चलती थी, यानी ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट दोनों धीमा था। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने इस स्थिति को बदल दिया है। आज पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर पर हर रोज 430 से ज्यादा मालगाड़ियां चलती हैं, प्रतिदिन 430 मालगाड़ी। और पहले जो मालगाड़ी 6.5 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करती थी, और अब वही मालगाड़ी आधे से भी कम समय में 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। जिस जगह पर ट्रक से सामान भेजने में सामान्य तौर पर 30 घंटे लगते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर यही दूरी 10-12 घंटे में पूरी हो जाती है। यानी इस कॉरिडोर पर

मालगाड़ी के चलने से ट्रक और ट्रेन में लगने वाला फ्यूल बचता है, किराया भाड़ा का खर्च कम हुआ है, समय बचा है, पर्यावरण को फायदा हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट एक ट्रैक पर किया और फायदे अनेक सारे हुए हैं। साथियों, इस फ्रेट कॉरिडोर से पूर्वी और पश्चिमी भारत के किसानों की उपज अब तेजी से बड़े बाजार तक पहुंच पा रही है। कई तरह के फूल, कई तरह की सब्जियां, कई तरह के फल, यानी जो चीजें मौसम के हिसाब से जल्दी खराब होती हैं, उनके लिए भी सही समय पर मंडियों और लोगों के बीच पहुंचने का रास्ता बना है। इससे किसान का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर एक और वजह से कमाल का है। हाल ही में जेएनपीटी मुंबई, जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया, यानी अब बड़ी मात्रा में सामान तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएगा। साथियों, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहां जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा रेल से जुड़ रहे हैं। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है। आज भी इस कार्यक्रम में कई नई ट्रेन शुरू हुई है। नई ट्रेन से वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, रोड, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गरीबों का घर, जब देश में करोड़ों लोगों के लिए चीजें बनती हैं तो इससे लोगों का जीवन आसान होता है और साथ ही छोटे से बड़े कामगार को रोजगार के लाखों लाख अवसर मिलते हैं। आप रेलवे का ही देखिए, इस वर्ष का रेल बजट 3.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये 12

वर्ष पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। यानी रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा खर्च हजारों हजार नए रोजगार बना रहा है और ये रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान तो बनता ही है। एक बार रोड, रेल, पाइपलाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट बन गया तो फिर उसके आसपास नए उद्योग लगना शुरू हो जाते हैं, नए बिजनेस आते हैं, ये फिर नए रोजगार बनाते हैं। वहां कुछ लोग, वो बेटी चित्र लेके कब से खड़ी हैं, वो सज्जन भी कुछ कला लेकर के आए हैं, जरा हमारे साथी उसको कलेक्ट कर लें। ये आगे पहुंचा दीजिए। हाँ, एक और भी है कोई? हाँ, ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने देश के सामने विकसित भारत की जिन सप्त धाराओं का विजन रखा है, उनमें एक धारा मैन्युफैक्चरिंग की भी है और वडोदरा शहर इसकी ताकत अच्छे से जानता भी है, समझता भी है। एजुकेशन, स्किल और इंडस्ट्री का कॉलेब कैसे होता है, ये वडोदरा करीब 150 साल से इसका प्रतिबिंब है। दशकों पहले यहां टेक्सटाइल और टाइल्स के निर्माण से एक यात्रा शुरू हुई थी जो बाद में ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स के साथ आगे बढ़ी। पिछले 2-2.5 दशक में वडोदरा एमएसएमई का एक बड़ा हब बन गया है। और मुझे याद है जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था तो वडोदरा का मेरे पर स्पेशल अधिकार रहा है हमेशा, तो हर हफ्ते कोई न कोई डेलीगेशन आता था, बस हमारे वडोदरा में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का हो, क्योंकि यहाँ पर आते थे तो या तो ज्योति या एलएमबिक या तो जीएसएफसी, यही सब दिखता था और कुछ सुनता नहीं देता। आज कहाँ से कहाँ बदल गया, अब तो ये शहर देश के पहले मेड इन इंडिया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी जाना जा रहा है। C-295 एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट यहां आसमान देख चुकी है। मैं वडोदरा के लोगों को ये गौरव पाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बीते एक दशक में भारत रेल कोच, मेट्रो कोच बनाने का, रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक भारत ने करीब 50,000, ये आंकड़ा सुन लिए, 2014 के बाद भारत ने अब तक 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट नहीं बना सकती थी। प
50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए और आज हम इसमें 200 गीगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी विकसित कर चुके हैं। और ऐसी ही आत्मनिर्भरता के कारण आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार हो रहा है। अब तक देश में 55 लाख परिवार अपने छत पर, टेरेस पर सोलर प्लांट लगा चुके हैं और इसमें 11 लाख परिवार हमारे गुजरात के हैं। यहां इतने सारे परिवार बिजली उत्पादक बन चुके हैं और इसके कारण प्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन और सर्विस तक कितने ही युवाओं को रोजगार मिला है, कितने नए वेंडर्स आए हैं। साथियों, झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है।

हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है। साथियों, आने वाले दौर में हर आधुनिक सेक्टर बिजली से ही चलेगा, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम पर निर्भर होगा। जैसे चिप इंडस्ट्री है, डेटा सेंटर और एआई से जुड़ी इंडस्ट्री है, इनका खाद पानी बिजली ही है। इसलिए अगर हमें एआई में दुनिया के सामने सुपर पावर बनना है तो देश को उसकी तैयारी, उसका इकोसिस्टम भी बनाना होगा। यही काम भारत ग्राउंड पर कर रहा है। तभी किसी देश से यूरेनियम के लिए समझौते हो रहे हैं, किसी से क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर समझौते किए जा रहे हैं। ये सारी मेहनत देश के युवाओं के फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करके की जा रही है, आपके भविष्य के लिए किया जा रहा है। साथियों, दुनिया तेजी से बदल रही है तो दुनिया की जरूरतें भी बदल रही है, और इसी प्रकार हमारी पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके भी बदल रहे। पहले

0: सिर्फ डिग्री पर होता था, लेकिन अब डिग्री के साथ साथ स्किल पर भी फोकस है, स्किल का महत्व बढ़ रहा है। नौजवानों के पास स्किल हो और वो स्किल समय समय पर अपग्रेड हो, एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। और इसलिए आज हम अपनी शिक्षा नीति को, शिक्षण और ट्रेनिंग के संस्थानों को नए रूप में ढाल रहे हैं। और इसी भाव के साथ ही मैंने लाल किले से भी युवा शक्ति के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है। पहली घोषणा देश की पारंपरिक जरूरत से जुड़ी है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहां लाखों नौजवान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल हमारे मिडिल क्लास परिवारों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों की कोचिंग पर खर्च हो जाता है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मिडिल क्लास के इस बच्चे की परिवारों के पैसों की बचत हो, और इसलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर के द्वारा उनके कोचिंग हो। हमारे जो नौजवान अपनी तैयारी कर रहे हैं उनकी कोचिंग का ध्यान सरकार खुद रखेगी। साथियों, भारत के नौजवानों को एआई में पारंगत होना उतना ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की पीढ़ी एआई के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है एआई सीखने वालों की जरूरत सिर्फ आईटी सेक्टर में है। अगर कोई स्किल को जानता है तो वो खेती के लिए नया एआई सॉल्यूशन बना सकता है, आरोग्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, रोबोटिक्स में अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास देश और दुनिया की इंडस्ट्री के लिए एआई को समझने वाले और एआई का इस्तेमाल करने वाले युवा हो। सरकार इसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। साथियों, भारत का यह कालखंड अभूतपूर्व है। ये भारत की युवा शक्ति का उत्कर्ष काल है। ये समय फिर भारत के जीवन में लौट कर नहीं आएगा, और इसलिए हमें 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखना है। हमें भारत को विकसित बनाकर ही रहना है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हवे मारू एक काम करू पड़ो, वडोदरा वाला है करसो पाके पाए। तमे वडोदरा आटलू बधु स्वच्छ बनावी दीधु, केटली बधी मेहनत करवी पड़ी। हूँ जो तो बधा नौजवानी आओ दिवस रात सफाई में लागेला हता। पण एक बार आपने नक्की करिए कि हवे आपणे वडोदराने गंदू थवा ज नथी देवू, हूँ पोते गंदकी नहीं करू, आ संकल्प करिए तो वडोदरा गंदू थाय, वडोदरा गंदू थाय तो दिवाळी आवी चकाचक जाय के ना जाय, नवरात्रि शानदार जाय के ना जाय, गणोत्सव में चार चार लागे कि ना लागे, तो आटलू काम थसे। शाबाद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका।
2: And to the tunes of Vande Bharat and electric, reception that Prime Minister received in Vadodara. Prime Minister concluding his 40-minute speech in a fresh connect with the youth. The Prime Minister Narendra Modi highlighted the benefits of the dedicated freight corridor, saying that the infrastructure has significantly reduced freight travel time, lowered transportation costs, and helped cut fuel consumption as well. Prime Minister also took a dig. At the opposition, and in fact without naming any leaders from the Congress party or the opposition, he said and took a swipe at critics of the dedicated freight corridor, referring to them as Nara's Fufaji. Was it a dig towards Rahul Gandhi? We'll have to wait and watch. While responding to the concerns over its impact on truck drivers in the trucking sector, he referred to the Nara's Fufaji jibe. Now, these Nara's Fufaji will shout, will the truck drivers be affected? Where will the trucks go? What will happen to those who bought the trucks? That's what Prime Minister Narendra Modi said. And these are latest visuals coming of the electric response with hundreds and thousands of youth present to welcome Prime Minister Narendra Modi. The Prime Minister also, in fact, highlighted India's expanding rail manufacturing capacity and used the figures to take a swipe at the previous government while contrasting its record with his government's infrastructure push. He said India had emerged as a major manufacturer of railway coaches, metro coaches and locomotives over the past decade. And from 2014 onwards, India has so far built 50,000 modern trains. The previous government in 10 years built over 50,000 toilets as well. He referred to the 12 years performance card of the Prime Minister with the kind of railway corridors that have been built, the developmental push under the BJP's NDA government, and took a dig at the UPA Sarkar and saying that the UP and the Congress party have blocked the development of the nation. Nara's Fufaji jibe also towards the opposition, perhaps against Rahul Gandhi. We'll have to wait and watch how the Congress and the opposition react to this fresh youth connect of Prime Minister Narendra Modi in Vadodara. But the Prime Minister took a dig at the opposition, saying that hardly any developmental work took place, and Prime Minister's Nara's Fufaji jibe at Rahul Gandhi. Some keep cribbing about everything, and that's how Prime Minister described the opposition's work over the years before the BJP NDA came in. Truth will defeat Jhooth Ki Goonj. That's what Prime Minister said, referring to the youth initiative of Rahul Gandhi and the Congress party. So a fresh dig at the opposition, but a fresh push towards the youth as well. This is part of a series of events led by Prime Minister Modi, the BJP and the government. Let's listen in once again to what Prime Minister Narendra Modi had to say.
0: पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, ये याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद 3-4 पीढ़ी आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है।
2: Of youth will defeat the jhoot ki goonj. That's what Prime Minister Narendra Modi said in his fresh attack against the Congress, Rahul Gandhi and the opposition. Joining us live to decode this message and the latest attack by Prime Minister against the opposition is Akhilesh Sharma, senior editor with NDTV. Akhilesh, what

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮੁਕਾ ਸਕੀਏ।
1: ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬੁੱਧ ਕਰਾਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੜਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਫਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਫਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ।
2: ਯਾਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ
3: Hello and welcome back. You're watching NDTV because when it really matters, it's NDTV. Now, NDTV has accessed FIR copy against the building owner, his wife and his son. The FIR alleges that the owners were aware of the structural risk, but the construction continued. This is the horrific story that's coming in from Delhi's Satya Niketan. In fact, what we have been tracking here on NDTV is how, in fact, he continued, allegedly driven by the lure of the rental income, to construct and have used this as a hostel. Police say that the additional construction placed immense pressure on the building's load-bearing capacity, eventually leading to the collapse. Case has now been registered for culpable homicide and endangering the life of others. Owner Hariram and his wife have been sent to 14-day judicial custody. Son Mahesh has been remanded to 2-day police custody as well. Meanwhile, the Delhi Chief Minister Rekha Gupta met the injured at the AIIMS Hospital in New Delhi. She also met parents and assured them of all support and assistance. He also gave 5 lakh checks to each injured. Let's listen in to Delhi Chief Minister Rekha Gupta and other reactions that we are picking up.
4: घायल बच्चों से मिली हूँ अभी, जैसे 12 लोग इंजर्ड स्थिति में वहां से निकले थे, उसमें से 7 लोग डेड पाए गए थे, उस 7 में से 2 लेबर थी। एक लेबर यहाँ एडमिट है जो कि अभी वर्तमान में ठीक है, उसके पैर में काफी चोट है जिसका इलाज चल रहा है, और उसके अलावा जो 5 स्टूडेंट थे, तो उस 5 स्टूडेंट में मतलब हमारे अभी यहाँ पे जो एडमिट हैं, 2 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक बच्चा आईसीयू में है जिस थोड़ा सा उसको तकलीफ ज़्यादा है, उसका इलाज वहाँ चल रहा है। पेरेंट्स से भी मैं मिली हूँ और सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज जो है पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी। बिल्डिंग डेंजरस है, उसे डेंजरस घोषित कर दिया गया है, उस बिल्डिंग को गिराया जाएगा और कल की डेट में वो बिल्डिंग गिरेगी।
5: लेकिन मजदूर
6: हमारी टीम और बाकी सारी एजेंसीज NDRF सब ने कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसमें FIR रजिस्टर करी गई क्योंकि उसमें कुछ बच्चों की दुखद मृत्यु भी हुई है। उसमें 3 लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट कर लिया है, जिसमें उर्मिला जो ओनर है इस PG की, जिनके नाम पे था ये, उनके हस्बैंड हरिराम गुप्ता जो है वो उनके नाम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, और महेश जो है उनके बेटे जो उनके साथ इस PG को पूरा ऑपरेट करते थे। तो 24 घंटे ये ऑपरेशन पूरा चला है, उसमें 12 लोगों को रेस्क्यू करा गया जिसमें से अभी 7 लोग की डेथ हो गई है।
7: जो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में विद्यार्थी दिल्ली के विभिन्न कॉलेजेस में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों, आई दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज़ हों, उनमें जो एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का गैप है उसको पूरा करने के लिए FAR में ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए FAR में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना, PG और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो जस्टिस गुआबा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी की रिपोर्ट बन रही है, PGs को रेगुलेट करना, इन सब विषयों पर सब विभागों के साथ चर्चा हुई है। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग करेंगे।
3: These were government reactions coming in, and now the harrowing account of two young students who were inside the neighboring PG when the building came crashing down. They say cracks had already been appearing on their walls, but moments before the collapse, the situation turned terrifying. They rushed to escape as debris blocked their exit, leaving their belongings behind. Watch this exclusive ground report by Tejshree with the eyewitnesses.
5: Well, I am being joined by those girls who stay in the building, which could collapse at any given point of time. Notice has been served to that building. और ये ऐसी इमारत है जो कभी भी ढह सकती है और इसी को लेकर फिलहाल आप देख सकते हैं कि गार्ड रेल्स भी लगाए गए और सुबह से हम इस इमारत की तस्वीर दिखा रहे हैं. खाली करा दी गई है पूरी बिल्डिंग. इन बच्चियों से बात करते हैं. फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्टेइंग? कब से रह रहे थे आप यहाँ पे?
8: आई वॉज स्टेइंग सिंस पास्ट वन मंथ.
5: एक महीने से रह रहे थे. अच्छा, तो अंदर की कंडीशन ठीक थी बिल्डिंग?
8: यस, माई रूम वॉज एब्सोल्यूटली फाइन. एंड मेरे रूम में वेंटिलेशन नहीं था. देर वॉज नो विंडो. इवन दैट द ओपन थिंग दैट यू सी, वो बिल्डिंग के गिरने के बाद बनी है. वो मेरे सामने क्रम्बल डाउन हुई है.
5: जब आप मतलब व्हेन द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, वेयर वर यू?
8: आई वाज इन द रूम.
5: यू वर इन योर रूम? इन दैट रूम?
8: इन दैट रूम.
5: सो वेयर इज, कैन यू जस्ट लोकेट वेयर योर रूम इज? बताइए कृष्णा जी उस तरफ कैमरा करके.
8: दैट्स माई रूम. दैट ओपन थिंग दैट यू सी द बॉक्स, दैट्स माई रूम.
5: द विंडो विच वी कैन सी फ्रॉम योर राइट नाउ, दैट इज योर रूम?
8: यस.
5: And the moment the building collapsed, you were very much present there?
8: Yes.
5: What all?
8: So she is my roommate, Arnita. We both were in the room.
9: And I was making a video and I was literally saying on that video that ye building to girne wali hai, like this wall girne wali hai. Wahan pe cracks mein se cement gir raha tha, pani aa raha tha. And then suddenly वो ज़्यादा आने लगा. वो एकदम अचानक से आ गया और द नेक्स्ट मोमेंट वो वाल पूरी गिर गई. पहले वो बिल्डिंग हमसे डिटैच हुई तो हमारा वाल गिरा. एंड देन हमने देखा वो बिल्डिंग ऐसे गिरते हुए. एंड वी आर सो शॉक्ड. हम बस किसी तरह जान बचा के भाग के आए. एंड वी वर द फर्स्ट पीपल जो पीजी से निकल के आए थे.
5: मतलब यू आर सेइंग दैट यू हैव योरसेल्फ सीन द बिल्डिंग कोलैप्सिंग?
8: वी सॉ दैट बिल्डिंग कोलैप्स.
9: 10 meters के डिस्टेंस पे थे हम.
8: हम पिछले दो दिनों से सो भी नहीं पाए हैं. हमें सपने में भी वो बिल्डिंग गिरते हुए दिखती है. हमें सपने में उन लड़कों की आवाज़ें सुनाई देती हैं. दे आर टेलिंग अस सेव अस सेव अस, बिकॉज वो बिल्डिंग तो हमारे सामने गिरी. बिकॉज दैट होल दैट यू सी, वो होल जब बना तो वी कुड सी देम, वी कुड सी द बिल्डिंग कोलैप्स.
3: Well, some very, very tense moments out there. Those were eyewitnesses exclusively speaking on NDTV about the Satya Niketan disaster. Now, we take you inside the narrow lanes of Satya Niketan where the building collapse took place. NDTV's managing editor, Padmaja Joshi, brings you the voices of students, a closer look at the cramped PG spaces and the stark reality of the life behind these walls, where dreams often come at a steep cost.
10: This is what looks like one of the better maintained paying guest accommodations, but the staircase remains as narrow. And here you see on every floor you will have a room. Most of these houses are being shared, and I just want you to again focus. This is the breadth of the staircase, and this is the solitary staircase that you have in this building. So either, if you can, then you try and jump from a balcony if you have access to it. Otherwise, this is pretty much it. And let's go up. So, and then if you're living on the fourth floor, there is no lift, so you have to walk all the way up or run all the way down, depending on what it is that you are doing. So here's a look at another such paying guest accommodation. One of the better ones, at least, has an access to a terrace and an independent washroom. This is on the fourth floor, and you have a slightly larger, a double bed, which is available, along with a fridge and a wardrobe. And this is the attached terrace, along with a small washing area. But again, even from here, you don't see any independent escape. From here, if you need to get out, you will have to go down that same staircase that I came up from. The lady who runs this paying guest accommodation is also here with us. मैम आपका यहाँ पे कितने साल से आप चला रहे हैं
11: ये
10: अकाउंट?
11: मैम ये हो गया लास्ट 8 to 9 years.
10: एंड हाउ मच डज वन पे फॉर अकोमोडेशन?
11: 10,000 पर बेड.
10: 10,000 पर बेड. बट इन वन रूम लाइक अ डबल बेड लाइक दिस यू हैव टू पे 20,000? नो.
11: या 20,000. क्योंकि पीजीज में रहते हैं, इनके फ्रेंड्स भी हैं, ये भी हैं, सब हैं, तो ये लोग गए हैं, इन्होंने देखा है.
10: और यहाँ पर कभी कोई

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई।

0: और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
1: All right, let's shift focus now to West Bengal, where politics has erupted and controversy has erupted over veg and non-veg food during Durga Puja. Remember, this is always a touchy topic, but this time this controversy has now erupted after Dhirendra Shastri, also known as Baba Bageshwar, called for meat and liquor shops to be shut during Durga Puja, urging the West Bengal government to convey his message. Now, this has created a huge furor. The Congress has filed police complaint against Bageshwar Baba over his comments on Durga Puja. Demand has also triggered a political pushback. BJP chief himself, West Bengal BJP chief Samik Bhattacharya, distanced the party from this year's remarks, saying the food choices are a personal matter and cannot be decided by any Baba. The Trinamool Congress too has hit out, questioning whether an outsider can decide what people in Bengal should eat. Congress took a dig, saying the BJP and RSS cannot control people's food choices. Take a look at those comments.
2: कौन कौन चाहता कि नॉन वेज बंद हो? पक्का अपने अपने मोबाइल की लाइट जलाओ ताकि पता लगे कौन कौन इस बात के समर्थन में हैं, और पूरे पश्चिम बंगाल में ये बात पहुंचे और यहाँ की सरकार के पास भी ये बात पहुंचे। कौन कौन चाहता कि दुर्गा पूजा में मांस मदिरा की दुकानें बंद हो जाएं पश्चिम बंगाल में?
3: तो बागेश्वर बाबा के बारे में जानता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बाहर से आके कोई बाबा सब ठीक कर देंगे तो बंगाल के लोगों का आज़ादी क्या है? लोग जैसे चाहते हैं कमिटी वैसे ही पूजा करेंगे, नियम पालन करके ही करेंगे, इसमें बागेश्वर बाबा कहाँ से आए?
4: ईश्वर बाबा पश्चिम बंगाल में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये बोलने का विषय शायद उसका नहीं है। वो बोल ही सकते हैं, आज तो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, जो सारे लोग वेजिटेरियन बन जाओ, कोई तो वेगन बन गया, ये तो चलते हैं दुनिया भर में। अब भी अपील कर दीजिए जो सब मटन खाने के लिए निकल पड़े, ये तो अकबर का विषय है। एक संत होने का नाते ऐसा वो बोल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे कोई ठीक कर देंगे ऐसा नहीं है। और आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बागेश्वर बाबा भारतीय जनता पार्टी का मैंने कोई हमारा ऊपर भी कोई पोस्ट में लेकर बैठ गया।
5: सामान्यतः हमारे देश में धारणा है, सनातन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि दिया है, तो इसलिए पूजा पाठ जब होता है उस समय हिंसा नहीं हो और मांस ना बेचे, इसलिए शाकाहारी भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन, पूजा का वातावरण बनता है। लेकिन बंगाल में क्या है, यहाँ काली भक्त है लोग, माँ काली को और यहाँ बलि चढ़ाया जाता है, और कितने भी देवता है यहाँ बलि चढ़ता है, माँ दुर्गा को भी बलि चढ़ता है नवमी के दिन, और उसको प्रसाद के रूप में लोग लेते हैं। इसीलिए यहाँ की परंपरा ही दूसरा है, यहाँ भगवान को प्रसाद में मछली खिलाया जाता है, ये परंपरा है और युगों से चलते आ रहा है। तो संतों ने अपने ढंग से बोलते हैं सबको कि पूजा के समय सात्विक तरह रहना चाहिए और पूजा का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, इसलिए जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ से दूर बेचे, जिसका इच्छा है वो खाएगा।
2: सब में कौन क्या खाएगा कौन क्या पहनेगा और हृदय से माता रानी को कैसे बुलाया जाएगा, ये कोई आरएसएस, कोई हिंदू महासभा, कोई बीजेपी और उनके चट्टे पट्टे जितने बाबा लोग हैं वो लोग तय करेगा, ये हो नहीं सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नया कॉन्सेप्ट है बीजेपी सत्ता में आने के बाद बंगाल में और बंगाल के समाज को इन्फ्लुएंस करने का, भारतीय जनता पार्टी का जो एक कोशिश है, ये कभी कामयाब नहीं होगा बंगाल के मिट्टी में।
1: All right, so huge controversy and Bengalis up in arms over the policing of their food choices, especially for Durga Puja. With that, we'll slip into a short break. More news updates on the other side. Stay with us.

0: The Vijay's video of touching his chin goes viral. NDTV accesses the FIR filed against the owner of the building that collapsed in Delhi's Satyaniketan. It reveals four floors were added to the PG building to increase profit, even though there was structural danger. And this is a shocker coming in from the national capital. Manipuri musician beaten to death in Delhi. Musician dies after an assault in the stairwell of his building after he objected to drinking and noise outside his house. Son alleges racism behind father's murder. Finally, a huge controversy in Paris. The Eiffel Tower shuts down in protest after women staff sidelined during a visit of a Hindu group that consecrated Baps Temple in France. The group says it respects the concerns raised. And the top focus here at Prime at 5. Prime Minister Narendra Modi made the Durandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. Prime Minister Modi launched a scathing attack on the opposition and UPA government era. Prime Minister Modi targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years together before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and they keep cribbing about everything. Here's what Prime Minister Narendra Modi had to say.
1: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। भारत के नौजवानों को एआई में पारंगत होना उतना ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की पीढ़ी एआई के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है एआई सीखने वालों की जरूरत सिर्फ आईटी सेक्टर में है। अगर कोई स्किल को जानता है तो वो खेती के लिए नया एआई सॉल्यूशन बना सकता है, आरोग्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, रोबोटिक्स में अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास देश और दुनिया की इंडस्ट्री के लिए एआई को समझने वाले और

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
1: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म. प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विथ फाइटिंग.
2: इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम दैट वन ऑफ आवर ब्रदर्स, अ गिफ्टेड म्यूजिशियन, अ म्यूजिक टीचर who gave life and music to thousands of people, was beaten to death by 8 men in Sunlight Colony, Hilo Creek, in New Delhi, about more than 24 hours ago. We are here gathered to give our condolences to our brother and also call upon the government of India that they should end all forms of racism and racial violence against people of Northeast India.
3: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and yes, we want it. We want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
4: What they are saying, the racism angle and the attack, or, you know, this kind of prejudice that the people from Northeast face, especially when they come to North India, in Delhi and other cities, it is backed by data, ladies and gentlemen. Remember, I just give you an example. A few days back, a 4-year-old young girl, Twinkle, who went viral after she came on camera, well, somebody called her Chinese. Now, this is something that happens so very often. All of us can keep our eyes closed, but this does happen. And that this is not the first time a racial kind of an attack in the national capital has taken place. A man was beaten up. Of course, this is mob violence that took place. But there is always this fear that people from Northeast have about their safety and security living in their own country. And that is a shame, that a burden all of us would have to bear. I want to very quickly also, in fact, tell you that all these people, those who were involved in this heinous crime, have been arrested, including the minor. Let's listen into what the Delhi police had to say about this.
5: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार हैं, उनसे बात करते हैं. सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
6: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था. जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे. उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई. उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई.
5: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
6: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और 1 माइनर अप्रिहेंड कर चुके हैं. वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे.
7: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
8: रात को 12:00 दो तीन मिनट में हुआ होगा. मैं खाना खा के सोने वाली थी, तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का. तो उसके बाद है ना, मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था. उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया. बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे, तो किसी को

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्थर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: Two houses here that were struck last night.
0: The heat.
3: The telltale signs of water.
0: The dust.
3: Something is changed.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, large

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आके और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: टू हाउसेस हियर दैट वाज स्ट्रक
5: upon the United Nations to dedicate one day for the elimination of child marriage from the world.
6: Globally, the priests decide
7: child marriage in its entirety.
8: Child marriage ki jab hum baat karte hain, to it is not limited just to a girl.
9: Samuday mein sam sakta hai kisi balika ka baal vivah na.
10: The assembly decides to adopt draft resolution A/80/L99. It is so decided.
11: एनडीटीवी को बहुत मैं इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले दिन से एनडीटीवी इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
8: Bade bade imtihanon se guzarta hai. Waqt tarashta hai jise. To jaane kya kya na karta hai. जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
9: Across the country,
10: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर, जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्थर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: टू हाउसेस हियर दैट वाज स्ट्रक लास्ट नाइट,
9: द हीट,
8: द टेलटेल साइंस ऑफ वाटर,
9: द डस्ट,
8: समथिंग हैज चेंज्ड इन बेलगाम,
9: द फ्रंट लाइंस, दैट्स शिव्स इंडिया।
8: पाकिस्तान आर्मी हैज वायलेटेड द सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल,
9: इट्स होप्स,
10: कांग्रेट्स चीफ मिनिस्टर विजय,
9: इट्स यर्निंग, इट्स ड्रीम्स, एट नाइन He brings it all home. Your stories, your fights, your voice. Because what matters to you, matters to Shiv. India Matters.

0: 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest.

0: And well, we have some breaking news on top of the show. Jawaharlal Nehru University, JNU, is now facing a fresh controversy over allegations of sexual harassment against a professor. With 11 students approaching the university's internal complaints committee now, the students have now alleged inappropriate conduct, sexually suggestive remarks, and according to the complaints, offers of higher marks in exchanges for sexual favors. The ICC has begun proceedings and is recording the statements of the complainants. The case has now triggered protest by the ABVP, which has alleged that the accused professor is receiving political protection because of his alleged links to the Congress. The allegations of political shielding are also being made by the student organization and remain a part of the wider dispute as the university inquiry continues.
1: Murdabad.
0: And that's what we're breaking to you. These are students who are protesting in JNU, students of Jawaharlal Nehru University, in which there are allegations made against a professor who has sexually harassed various students, gone on to even saying that you will get higher marks if you do favors. ABVP, which is the BJP wing student organization, now says that the alleged professor is receiving political protection because of his alleged links to the Congress. And now Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
2: Hello?
0: Yes, please continue. We can hear you.
2: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस जेएनएम बोला जाता है वहां घटना है और वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वाइबा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेन जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइबा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है. ऐसे कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है और अगले 10 दिनों में देना होता है. अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन भी
0: 4 महीने हो चुके हैं.
2: 4 महीने मई की घटना है और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए और ये पहली घटना नहीं हुई है. जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं आईसी के इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर के खुद के लोग हैं दोनों का.
0: Thank you so much for sharing those insights here with us. I'm also now being joined by Soumya Jaiswal. Soumya, what are you picking up more on this? There's been a protest by the ABVP, by the students there, against that professor. Allegedly, he has links to the Congress Party of sexual assault, sexual harassment complaints. Where is the probe headed to? We're learning that this case is of May.
3: Yes, well, Raisha, the ABVP wing of JNU held a march inside the campus wherein they have burnt effigies of the IC committee and as well as the accused, the Congress MP. The accused here is a senior Congress leader, also the Lok Sabha MP. And now it's been, as mentioned by the ABVP as well, this case is from May. It actually, the complaint reached to the internal committee of JNU back in May. And it has been several months now, despite crossing the 90-day mark. There is no development with regards to where

बहुत मैं इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले दिन से एनडीटीवी इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा।

0: you very much for sharing your views with us. Remains to be seen on how Congress responds to that recent fallout that has now taken a political turn. For the moment, we move on to some other stories that we are tracking, and this one is about a sexual harassment controversy that has now erupted at the JNU campus. Delhi has now turned into a political confrontation on the campus. Now, the AVBP held a protest on the campus alleging that the accused professor in the case is linked to the Congress party. It has also accused the university panel of delaying action and has questioned whether the political influence is at play. There are 11 students who have approached the university's internal complaints committee with allegations against a professor, including inappropriate conduct during Viva examinations, sexually suggestive remarks, and even, according to the complaints, offers of higher marks in exchange for sexual favors. Now, the allegations first surfaced after a student shared her experience in a student's only WhatsApp group following the Viva examinations that were held in the month of May. There were other students then who came forward with similar accounts. The university committee had then begun proceedings, and students have been asked to record their statements. We earlier spoke to the AVBP General Secretary, listening to what he had to say on the matter. Now, Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
1: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस जेएनएम बोला जाता है वहाँ घटना है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वाइवा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेन जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइवा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है. ऐसे कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है और अगले 10 दिनों में देना होता है. अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन भी
0: 4 महीने हो चुके हैं.
1: 4 महीने ये मई की घटना है और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए और ये पहली घटना नहीं हुई है. जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं आईसी के इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर के खुद के लोग हैं.
0: From the national capital, let's now tell you what's making headlines in the state of Tamil Nadu. Tamil Nadu's political battle has now spilled onto the floor of the assembly, and this time it has turned extremely personal. Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, launched a blistering attack on the DMK, taking aim at its corruption record and challenging the party's carefully cultivated Mr. Clean image. But one moment in the speech has triggered a fresh political storm. The DMK claims that Vijay mocked the former Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin's physical injury and an injury that Stalin suffered after being assaulted in custody during the emergency period. DMK MP Kani Mohi has also accused the Chief Minister of touching lowest of lows with his comments on M.K. Stalin. Ally CPIM has also hit out at the Chief Minister. The left says political criticism is one thing, but ridiculing a personal injury is beyond the line. The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, had then gone on to clarify his gesture in the assembly by saying that the gesture he made yesterday was with the hand and jaw, was not intended to hurt anyone. Now, why did he have to come up with that clarification is a point of contention, but here are the reactions that we're tracking on the story.
2: நம்ம நண்பர்கள் எது பேசினாலும் நாங்க மிஸ்ஸாவை பார்த்தவங்க மிஸ்ஸாவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் மிஸ்ஸாவை கொண்டு வந்து விட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. ஐயா பெரியவர்களே எல்லாருக்கும் அந்த மிஸ்ஸாவை பத்தின ஹிஸ்டரிய பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும்.
3: மிஸ்ஸா எமர்ஜென்சியை கொச்சப்படுத்துறாரு. நாடு முழுவதும், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, நாடு முழுவதும் அதை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்காக போராடி எத்தனை பேர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர்கள் எத்தனை பேர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க, இதன் வரலாறு தெரிய வேண்டும். கேள்வி சட்டமன்றத்தில் கேட்கப்பட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க, அதை புரிஞ்சுக்காம மற்றவங்க மேலே குற்றம் சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கை அப்படின்னு அதை கேலி கூத்தாக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் டுடே தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு விஜய் அவர்களுடைய பேச்சு வந்து இட் டச்ட் தி லோவஸ்ட் ஆஃப் தி லோ.
4: பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் அதெல்லாம் வந்து கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணதில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் கேட்காதுங்களோ அதில் விசாரணைக்கு எந்த விதத்திலும் விசாரணையை பற்றியோ நீதிமன்றத்தை பற்றியோ எதுவும் பேசல. எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்குதோ அது ஆதாரத்தை குறிப்பிட்டு பேசினார். சர்க்காரிய கமிஷனை பற்றி இந்த அவையிலே எல்லாமே இருக்கு, இருக்கிறது தானே பேசினார். மிசா குறித்து நிறைய பேசியாச்சு. மிசாவில் யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்களில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்பறி வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனால் எல்லாமே மிசாவில் கைது செய்தால் கன்சிடர்லாம் பண்ண முடியாது. மிசாவில் வழிப்பறி வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்லை பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தின் திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார் மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவங்க அப்போ இருந்த இப்போ இருக்க முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் 21வது அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்போ கைது செய்யப்பட்டார்.
0: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a woman relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
5: ये हमें ये हम सब जानते हैं ये कि सिर्फ भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है. चाहे वो महिला काम करने वाली हो या वो सफल हो या वो नेत्री हो या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है. और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है जिस तरह से भी वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलोच के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है. तो इस तरह की जो है ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं.
0: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
6: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
7: रात को 12 बज के दो तीन मिनट में हुआ होगा, मैं खाना खा के सोने वाली थी तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का मारपीट का। तो उसके बाद है ना मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था तीन चार ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया। बेलकोनी में यहाँ पर दो लड़के खड़े थे, तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था नीचे आओ नीचे आओ बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक। अच्छा तो अंदर क्या हो रहा है मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है। उसके बाद है ना पीछे से देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से तीन चार लड़के जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं अंदर चले गए और थ्री मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए।
8: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
9: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म। प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विद फाइटिंग।
10: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment. And yes, we want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all this racism and, you know, crimes against us.
11: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
12: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक PCR कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे। उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई।
11: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
12: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और एक माइनर अप्रेहेंड कर चुके हैं। वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे।
0: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that the keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
13: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। JNPT पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया, 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
0: And with that, it's time for us to slip in over a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
14: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
15: Two houses here that were struck last night.
14: The heat.
15: The telltale signs of water.
14: The dust.
15: Something has changed in Pahalgam.
14: The front lines. That's Shiv's India.
15: Pakistan Army has violated the ceasefire on the line of control.
14: Its hopes.
16: Congrats, Chief Minister Vijay.
14: Its yearning. Its dreams. At 9, he brings it all home. Your stories. Your fights. Your voice. Because what matters to you matters to Shiv. India Matters, 9 p.m.
0: Thank you for staying with us. Now, coming up from the world of technology, Apple's biggest event of the year is almost here. And this time, the company could be changing one of its most familiar traditions. While the premium iPhone 18 Pro models and the Apple's first ever foldable iPhone could take the center stage in September, the standard iPhone 18 and the iPhone 18e and the second generation iPhone Air may only arrive in spring 2027. Here's the full story, we leave you with it.
17: Apple's biggest event of the year is almost here, and this time the company could be changing one of its most familiar traditions. According to supply chain reports compiled by MacRumors, the standard iPhone 18, a new iPhone 18e, and the second generation iPhone Air could be pushed to spring 2027. That would leave September for the premium models, the iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, and Apple's first ever foldable iPhone. The iPhone 18 Pro models are expected to feature Apple's A20 Pro chip, reportedly built on a 2-nanometer process along with a faster C2 modem. The cameras could also get a major upgrade, with reports pointing to a variable aperture main camera. And then there's the color. Renders from leakers have shown a deep burgundy red finish, while other reports have described a similar shade as dark cherry, alongside possible brown and purple options. But the real headline could be the foldable, reportedly called the iPhone Fold or iPhone Ultra. Reports from analyst Ming-Chi Kuo and Bloomberg's Mark Gurman

0: அதுல விசாரணைக்கு எந்த விதத்திலும் விசாரணையை பத்தியோ நீதிமன்றத்தை பத்தியோ எதுவும் பேசல. எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்குதோ அது ஆதாரத்தை குறிப்பிட்டு பேசினார். சர்க்காரிய கமிஷனை பத்தி இந்த அவையிலே எல்லாமே இருக்கு, இருக்கிறது தானே பேசினாரு. மிசா குறிச்சு நிறைய பேசியாச்சு. மிசால யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்களில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்புறி வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனால் எல்லாமே மிசாவில் கைது செய்தால் கன்சிடர்லாம் பண்ண முடியாது. மிசாவில் வழிப்புறி வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்லை பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார் மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவங்க அப்போ இருந்த முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள். 21வது அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்ப கைது செய்யப்பட்டார்.
1: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a women relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
2: ये हमें, ये हम सब जानते हैं, ये किसी भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है. चाहे वो महिला काम करने वाली हो, या वो सफल हो, या वो नेत्री हो, या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है, हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है. और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार, अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है, जिस तरह से भी, वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है. तो इस तरह की जो है, ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है, ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है, कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं.
1: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
3: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
4: रात को 12 बज के 2-3 मिनट में हुआ होगा. मैं खाना खा के सोने वाली थी, तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का. तो उसके बाद है ना, मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था. उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया. बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे, तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से. मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक. अच्छा, तो अंदर क्या हो रहा है, मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है. उसके बाद है ना, पीछे से देखा था ऊपर.

0: ऊपर से तो भी देखेगा, फेस भी नहीं देखेगा। नीचे से तीन चार लड़के जाते हुए मैंने देखा, उसके बाद मैं अंदर चले गया और ट्री मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए।
1: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
2: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म। प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विथ फाइटिंग।
3: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and yes. We want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
4: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
5: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे। उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई।
4: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
5: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और 1 माइनर अप्रिहेंड कर चुके हैं। वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे।
6: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
7: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
6: And with that, it's time for us to slip in over a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
8: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: எல்லாமே இருக்கு. இருக்கிறது தானே பேசினாரு. மிசா குறிச்சு நிறைய பேசியாச்சு. மிசால யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்கள்ல திருட்டு வழக்கு, வழிப்புறி வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனா எல்லாமே மிசால கைது செய்தா கன்சிடர் எல்லாம் பண்ண முடியாது. மிசால வழிப்புறி வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்ல பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார் மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவங்க அப்ப இருந்த இப்ப இருக்க முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் 21 அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்ப கைது செய்யப்பட்டார்.
1: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a woman relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
2: ये हमें ये हम सब जानते हैं ये किसी भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है. चाहे वो महिला काम करने वाली हो या वो सफल हो या वो नेत्री हो या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है. और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है जिस तरह से भी वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है. तो इस तरह की जो है ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं.
1: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
3: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
4: रात को 12 बज के 2-3 मिनट में हुआ होगा. मैं खाना खा के सोने वाले थे तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का मारपीट का. तो उसके बाद है ना मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था. उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा. तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया. बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ बहुत ज़ोर ज़ोर से. मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था. तब तक अच्छा तो अंदर क्या हो रहा है मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है। उसके बाद है ना पीछे से देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से तीन चार लड़के जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं अंदर चले गया और मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का

0: जाए।
1: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
2: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म। प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विथ फाइटिंग।
3: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and we want it. We want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
4: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार उनसे बात करते हैं। सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
5: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे। उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई।
4: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
5: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और 1 माइनर अप्रेहेंड कर चुके हैं। वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे।
6: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his naraz fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
7: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, सात आठ वर्ष में एक किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था.
6: एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू स्लिप इन ओवर ए क्विक ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. न्यूज़ एंड अपडेट कंटिन्यू ऑन द अदर साइड.
0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: interaction. One of the street vendors there, he himself offered a plate of idlis to the chief minister, and the chief minister has just, consumed it, and that's what the clarification has come in. We'll really have to see whether an official response comes in from the chief minister. The BJP, of course, is, training their guns at the Congress party over this, and we could expect this to snowball into another controversy.
1: Right, Deepak, thank you very much for getting us those details. Also being joined by Pradeep Bhandari, BJP spokesperson on the phone line. Pradeep, you've heard what our reporter has to say. The BJP is alleging that this is a double standard of the Congress party. However, the Congress sources have said that it was not D.K. Shivkumar who had asked for a different set of plate. It was the workers themselves who had gone out and offered him that.
2: So this tells you that even workers know that the Congress leaders will not eat in the same plate as the workers are eating. This further exposes that even in the mind of the laborers and the poor people, the Congress party is a party of shehnshahs, and the Congress party shows double standards. Had D.K. Shivkumar been a man who believed in equality, he would have eaten in the same plate as the laborer is. So if you recall Rahul Gandhi's statement, you had a story from Tamil Nadu, which is a Congress-ruled state, where there is discrimination done on the basis of caste line. Now you have another Congress-ruled state where the Congress chief minister, on the instructions of Rahul Gandhi, is discriminating against the poor laborers coming from the marginalized community. This tells you how much hate the Congress party has for the laborers and the poor people. This exposes the Congress party and Rahul Gandhi further.
1: Right, but Pradeep, don't you think that if DK hadn't asked for a different set of plate, and because it was offered to him, shouldn't it had just been died down there, and the need for it to become controversial at this point in time, even after clarification, even after what the workers over there chose to do with the chief minister, be it with pure intentions, shouldn't turn so controversial at this point?
2: No, it is the DK Shivkumar who is, by choosing not to eat in the same plate as the laborers are eating, exposing that the Congress party believes there are two laws, one for the Congress leaders and other for the people and the common citizens. And the same mindset of a Maibaap culture, the Congress party had ruled the country in the past under UP and is now doing so in Karnataka. Rahul Gandhi practices something else and preaches something else. In fact, what D.K. Shivkumar has done is what Rahul Gandhi had done in the past, and you saw Narayan Swamy's minister picking up slippers for Rahul Gandhi. It's a shame that these people are considering this country as from a point of view of Maibaap. They should apologize, to say the least.
1: Right, Mr. Bhandari, thank you very much for sharing your views with us. Remains to be seen on how Congress responds to that recent fallout that has now taken a political turn. For the moment, we move on to some other stories that we are tracking, and this one is about a sexual harassment controversy that has now erupted at the JNU campus. Delhi has now turned into a political confrontation on the campus. Now, the AVBP held a protest on the campus alleging that the accused professor in the case is linked to the Congress party. It has also accused the university panel of delaying action and has questioned whether the political influence is at play. There are 11 students who have approached the university's internal complaints committee with allegations against a professor, including inappropriate conduct during Viva examinations, sexually suggestive remarks, and even, according to the complaints, offers of higher marks in exchange for sexual favors. Now, the allegations first surfaced after a student shared her experience in a student's only WhatsApp group following the Viva examinations that were held in the month of May. There were other students then who came forward with similar accounts. The university committee had then begun proceedings, and students have been asked to record their statements. We earlier spoke to the AVBP General Secretary, listening to what he had to say on the matter. Now, Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
3: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस जेएनएम बोला जाता है वहाँ घटना है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वाइबा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेन जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइबा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है, लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है। ऐसे कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था, और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी, जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं, उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है, और अगले 10 दिनों में देना होता है। अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और प्रशासन भी
1: 4 महीने हो चुके हैं जी।
3: 4 महीने, ये मई की घटना है, और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है, और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए। और ये पहली घटना नहीं हुई है, जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं, आईसी के इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे, वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर के खुद के लोग हैं।
1: From the national capital, let's now tell you what's making headlines in the state of Tamil Nadu. Tamil Nadu's political battle has now spilled onto the floor of the assembly, and this time it has turned extremely personal. Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, launched a blistering attack on the DMK, taking aim at its corruption record and challenging the party's carefully cultivated Mr. Clean image. But one moment in the speech has triggered a fresh political storm. The DMK claims that Vijay mocked the former Chief Minister of Tamil Nadu M.K. Stalin's physical injury, and an injury that Stalin suffered after being assaulted in custody during the emergency period. DMK MP Kani Mohi has also accused the Chief Minister of touching lowest of lows with his comments on M.K. Stalin. Ally CPIM has also hit out at the Chief Minister. The left says political criticism is one thing, but ridiculing a personal injury is beyond the line. The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, had then gone on to clarify his gesture in the assembly by saying that the gesture he made yesterday was with the hand and jaw, was not intended to hurt anyone. Now, why did he have to come up with that clarification is a point of contention, but here are the reactions that we're tracking on the story.
4: நம்ம நண்பர்கள் எது பேசினாலும் நாங்க மிசாவை பார்த்தவங்க, மிசாவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் மிசாவை கொண்டு வந்து விட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. ஐயா பெரியவர்களே, எல்லாருக்கும் அந்த மிசாவை பத்தின ஹிஸ்டரிய பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும்.
5: மிசா எமர்ஜென்சியை கொச்சப்படுத்துறாரு. நாடு முழுவதும், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, நாடு முழுவதும் அதை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்காக போராடி எத்தனை பேர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர்கள் எத்தனை பேர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க, இதன் வரலாறு தெரிய வேண்டும். கேள்வி சட்டமன்றத்தில் கேட்கப்பட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க, அதை புரிஞ்சுக்காம மற்றவங்க மேலே குற்றம் சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கை அப்படின்னு அதை கேலி கூத்தாக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் டுடே The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay Avargalude pechu vandu, it touched the lowest of the low.
6: Public document, adhalam vandu court la file pannadala, enga engalam aadharam ketkaralo, adhula visaranaikku endha vedhilum visaranai pathiyo, neethimandrathai pathiyo edhum pesala. Enga engalam aadharam irukudho, adha aadharathai kurippittu pesinar. சர்க்காரிய கமிஷனை பத்தி இந்த அவையிலே எல்லாமே இருக்கு, இருக்கிறதானே பேசினாரு. மிசா குறிச்சு நிறைய பேசியாச்சு. மிசால யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்களில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்பறி வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனால் எல்லாமே மிசாவில் கைது செய்தால் கன்சிடர்லாம் பண்ண முடியாது. மிசாவில் வழிப்பறி வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்லை பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார், மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவங்க அப்போ இருந்த இப்போ இருக்க முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள். 21 அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்போ கைது செய்யப்பட்டார்.
1: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a women relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
7: ये हमें, ये हम सब जानते हैं, ये किसी भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है। चाहे वो महिला काम करने वाली हो, या वो सफल हो, या वो नेत्री हो, या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है, हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है। और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार, अभिनेत्री, और जो भी उनके जो संबंध है, जिस तरह से भी, वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलोच के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है। तो इस तरह की जो है, ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है, ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है, कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं, और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं।
1: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
8: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
9: रात को 12 बज के 2-3 मिनट में हुआ होगा। मैं खाना खा के सोने वाली थी, तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का। तो उसके बाद है ना, मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया। बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे, तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक। अच्छा, तो अंदर क्या हो रहा है, मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है। उसके बाद है ना पीछे से देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा, फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से 3-4 लड़के जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं अंदर चले गया, और मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए।
10: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
11: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म। प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विथ फाइटिंग।
12: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and we want it. We want justice, because this has been very frequent. the people of North East has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
13: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार हैं, उनसे बात करते हैं. सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
14: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था. जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे. उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई. उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई.
13: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
14: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और एक माइनर अप्रेहेंड कर चुके हैं. वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे.
1: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
15: Jhoot ki gunj se bharmane wale to har chauhraye par mil jayenge, lekin Bharat ka naujawan sach ki hunkar se chalta hai, sach ki hunkar ke saath chalta hai, सच की हुंकार के लिए चलता है. जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया. इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया. 250 ट्रक. अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा. अब फूफाजी को काम मिल गया. पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई. और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था.
1: And with that, it's time for us to slip in over a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
16: Track the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait.

0: and offered him that.
1: So this tells you that even workers know that the Congress leaders will not eat in the same plate as the workers are eating. This further exposes that even in the mind of the laborers and the poor people, the Congress party is a party of shanshas, and the Congress party shows double standards. Had D.K. Shivkumar been a man who believed in equality, he would have eaten in the same plate as the laborer is. So if you recall Rahul Gandhi's statement, you had a story from Tamil Nadu, which is a Congress-ruled state, where there is discrimination done on the basis of caste line. Now you have another Congress-ruled state where the Congress chief minister, on the instructions of Rahul Gandhi, is discriminating against the poor laborers coming from the marginalized community. This tells you how much hate the Congress party has for the laborers and the poor people. This exposes the Congress party and Rahul Gandhi further.
0: Right, but Pradeep, don't you think that if DK hadn't asked for a different set of plate, and because it was offered to him, shouldn't it had just been died down there, and the need for it to become controversial at this point in time, even after clarification, even after what the workers over there chose to do with the chief minister, be it with pure intention, shouldn't turn so controversial at this point?
1: No, it is the DK Shivkumar who is, by choosing not to eat in the same plate as the laborers are eating, exposing that the Congress party believes there are two laws, one for the Congress leaders and other for the people and the common citizens. And the same mindset of a Maibaap culture, the Congress party had ruled the country in the past under UPA and is now doing so in Karnataka. Rahul Gandhi practices something else and teaches something else. In fact, what D.K. Shivkumar has done is what Rahul Gandhi had done in the past, and you saw Narayan Swamy's minister picking up slippers for Rahul Gandhi. It's a shame that these people are considering this country as from a point of view of Maibaap. They should apologize, to say the least.
0: Right, Mr. Bhandari, thank you very much for sharing your views with us. Remains to be seen on how Congress responds to that recent fallout that has now taken a political turn. For the moment, we move on to some other stories that we are tracking, and this one is about a sexual harassment controversy that has now erupted at the JNU campus. Delhi has now turned into a political confrontation on the campus. Now, the AVBP held a protest on the campus alleging that the accused professor in the case is linked to the Congress party. It has also accused the university panel of delaying action and has questioned whether the political influence is at play. There are 11 students who have approached the university's internal complaints committee with allegations against a professor, including inappropriate conduct during viva examinations, sexually suggestive remarks, and even, according to the complaints, offers of higher marks in exchange for sexual favors. Now, the allegations first surfaced after a student shared her experience in a student's only WhatsApp group following the viva examinations that were held in the month of May. There were other students then who came forward with similar accounts. The university committee had then begun proceedings, and students have been asked to record their statements. We earlier spoke to the AVBP General Secretary, listening to what he had to say on the matter. Now, Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
2: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस जेएनएम बोला जाता है वहाँ घटना है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वाइबा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेन जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइबा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है ऐसे कुछ कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है और अगले 10 दिनों में देना होता है अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन भी
0: 4 महीने हो चुके हैं
2: जी 4 महीने मई की घटना है और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो भी इससे छुपी साधे हुए, और ये पहली घटना नहीं हुई है, जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं, आईसीए इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे, वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर के खुद के लोग हैं।
0: From the national capital, let's now tell you what's making headlines in the state of Tamil Nadu. Tamil Nadu's political battle has now spilled onto the floor of the assembly, and this time it has turned extremely personal. Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, launched a blistering attack on the DMK, taking aim at its corruption record and challenging the party's carefully cultivated Mr. Clean image. But one moment in the speech has triggered a fresh political storm. The DMK claims that Vijay mocked the former Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin's physical injury and an injury that Stalin suffered after being assaulted in custody during the emergency period. DMK MP Kani Mohi has also accused the Chief Minister of touching lowest of lows with his comments on M.K. Stalin. Ally CPIM has also hit out at the Chief Minister. The left says political criticism is one thing, but ridiculing a personal injury is beyond the line. The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, had then gone on to clarify his gesture in the assembly by saying that the gesture he made yesterday was with the hand and jaw, was not intended to hurt anyone. Now, why did he have to come up with that clarification is a point of contention, but here are the reactions that we're tracking on the story.
3: நம்ம நண்பர்கள் எது பேசினாலும் நாங்க மிஸ்ஸாவை பார்த்தவங்க மிஸ்ஸாவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் மிஸ்ஸாவை கொண்டு வந்து விட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. ஐயா பெரியவர்களே, எல்லாருக்கும் அந்த மிஸ்ஸாவை பத்தின ஹிஸ்டரிய பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும்.
4: மிஸ்ஸா எமர்ஜென்சியை கொச்சப்படுத்துறாரு. நாடு முழுவதும், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, நாடு முழுவதும் அதை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்காக போராடி எத்தனை பேர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர்கள் எத்தனை பேர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க, இதில் வரலாறு தெரிய வேண்டும். கேள்வி சட்டமன்றத்தில் கேட்கப்பட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க, அதை புரிஞ்சுக்காம மற்றவங்க மேலே குற்றம் சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கை அப்படின்னு அதை கேலி கூத்தாக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் டுடே தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு விஜய் அவர்களுடைய பேச்சு வந்து இட் டச்ட் தி லோவஸ்ட் ஆஃப் தி லோ.
5: பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் அதெல்லாம் வந்து கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணதில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் கேட்காதுங்களோ அதில் விசாரணைக்கு எந்த விதத்திலும் விசாரணையை பற்றியோ நீதிமன்றத்தை பற்றியோ எதுவும் பேசலை. எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்குதோ அது ஆதாரத்தை குறிப்பிட்டு பேசினார். சர்க்காரிய கமிஷனை பத்தி இந்த அவையிலே எல்லாமே இருக்கு, இருக்கிறது தானே பேசினாரு. மிசா குறிச்சு நிறைய பேசியாச்சு. மிசால யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்களில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்புறை வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனால் எல்லாமே மிசாவில் கைது செய்தால் கன்சிடர்லாம் பண்ண முடியாது. மிசாவில் வழிப்புறை வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்லை பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார் மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவங்க அப்போ இருந்த இப்போ இருக்க முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் 21 அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்போ கைது செய்யப்பட்டார்.
0: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a women relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
6: ये हमें, ये हम सब जानते हैं, ये किसी भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है. चाहे वो महिला काम करने वाली हो, या वो सफल हो, या वो नेत्री हो, या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है, हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है. और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार, अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है, जिस तरह से भी, वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है. तो इस तरह की जो है ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं।
0: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
7: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
8: रात को 12 बज के 2-3 मिनट में हुआ होगा। मैं खाना खा के सोने वाली थी तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का। तो उसके बाद है ना मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया। बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक। अच्छा तो अंदर क्या हो रहा है, मैंने चिल्ला के बोला था तो उसने बोला था पता नहीं है। उसके बाद है ना पीछे से देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से 3-4 लड़के जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं अंदर चले गया और मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए।
9: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
10: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म। प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विथ फाइटिंग।
11: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and we want it. We want justice because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
12: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार उनसे बात करते हैं। सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
13: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक PCR कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे। उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई। उसके

0: बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई।
1: सर कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
0: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और एक माइनर अप्रेहेंड कर चुके हैं। वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे।
2: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
3: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
2: And with that, it's time for us to slip in over a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

बहुत मैं इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले दिन से एनडीटीवी इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा।

0: instructions of Rahul Gandhi is discriminating against the poor laborers coming from the marginalized community. This tells you how much hate the Congress party has for the laborers and the poor people. This exposes the Congress party and Rahul Gandhi further.
1: Right, but Pradeep, don't you think that if DK hadn't asked for a different set of plate, and because it was offered to him, shouldn't it had just been died down there, and the need for it to become controversial at this point in time, even after clarification, even after what the workers over there chose to do with the chief minister, be it with pure intention, shouldn't turn so controversial at this point?
0: No, it is the DK Shivkumar who is, by choosing not to eat in the same plate as the laborers are eating, exposing that the Congress party believes there are two laws, one for the Congress leaders and other for the people and the common citizens. And the same mindset of a Maibaap culture, the Congress party had ruled the country in the past under UPA and is now doing so in Karnataka. Rahul Gandhi practices something else and preaches something else. In fact, what DK Shivkumar has done is what Rahul Gandhi had done in the past, and you saw Narayan Swamy's minister picking up slippers for Rahul Gandhi. It's a shame that these people are considering this country as from a point of view of Maibaap. They should apologize, to say the least.
1: Right, Mr. Bhandari, thank you very much for sharing your views with us. Remains to be seen on how Congress responds to that recent fallout that has now taken a political turn. For the moment, we move on to some other stories that we are tracking, and this one is about a sexual harassment controversy that has now erupted at the JNU campus. Delhi has now turned into a political confrontation on the campus. Now, the AVBP held a protest on the campus alleging that the accused professor in the case is linked to the Congress party. It has also accused the university panel of delaying action and has questioned whether the political influence is at play. There are 11 students who have approached the university's internal complaints committee with allegations against a professor, including inappropriate conduct during Viva examinations, sexually suggestive remarks, and even, according to the complaints, offers of higher marks in exchange for sexual favors. Now, the allegations first surfaced after a student shared her experience in a student's only WhatsApp group following the Viva examinations that were held in the month of May. There were other students then who came forward with similar accounts. The university committee had then begun proceedings, and students have been asked to record their statements. We earlier spoke to the AVBP General Secretary, listening to what he had to say on the matter. Now, Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
2: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस जेएनएम बोला जाता है वहाँ घटना है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वाइबा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेन जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइबा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है. ऐसे कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है और अगले 10 दिनों में देना होता है. अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन भी
1: 4 महीने हो चुके हैं.
2: 4 महीने मई की घटना है और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए और ये पहली घटना नहीं हुई है. जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं आईसी के इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर के खुद के लोग हैं.
1: From the national capital, let's now tell you what's making headlines in the state of Tamil Nadu. Tamil Nadu's political battle has now spilled onto the floor of the assembly, and this time it has turned extremely personal. Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, launched a blistering attack on the DMK, taking aim at its corruption record and challenging the party's carefully cultivated Mr. Clean image. But one moment in the speech has triggered a fresh political storm. The DMK claims that Vijay mocked the former Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin's physical injury and an injury that Stalin suffered after being assaulted in custody during the emergency period. DMK MP Kani Mohi has also accused the Chief Minister of touching lowest of lows with his comments on M.K. Stalin. Ally CPIM has also hit out at the Chief Minister. The left says political criticism is one thing, but ridiculing a personal injury is beyond the line. The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, had then gone on to clarify his gesture in the assembly by saying that the gesture he made yesterday was with the hand and jaw, was not intended to hurt anyone. Now, why did he have to come up with that clarification is a point of contention. But here are the reactions that we're tracking on the story.
3: நம்ம நண்பர்கள் எது பேசினாலும் நாங்க மிசாவை பார்த்தவங்க மிசாவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் மிசாவை கொண்டு வந்து விட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. ஐயா பெரியவர்களே எல்லாருக்கும் அந்த மிசாவை பத்தின ஹிஸ்டரியை பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும்.
4: மிசா எமர்ஜென்சியை கொச்சப்படுத்துறாரு. நாடு முழுவதும், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, நாடு முழுவதும் அதை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்காக போராடி எத்தனை பேர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர்கள் எத்தனை பேர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க, இதில் வரலாறு தெரிய வேண்டும். கேள்வி சட்டமன்றத்தில் கேட்கப்பட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க, அதை புரிஞ்சுக்காம மற்றவங்க மேலே குற்றம் சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கை அப்படின்னு அதை கேலி கூத்தாக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் டுடே The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay Avargalude page vandu, it touched the lowest of the low.
5: Public document, edhalam vandu court la file pannadala, enga engalam aadharam ketkaralo, adhula visaranaiki endha vedhilum visaranai pathiyo, neethimandrathai pathiyo edhum pesala. Enga engalam aadharam irukudho, adha aadharathai kurippittu pesinar. சர்க்காரிய கமிஷனை பத்தி இந்த அவையிலே எல்லாமே இருக்கு, இருக்கிறது தானே பேசினாரு. மிசா குறிச்சு நிறைய பேசியாச்சு. மிசால யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்களில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்புறி வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனால் எல்லாமே மிசாவில் கைது செய்தால் கன்சிடர்லாம் பண்ண முடியாது. மிசாவில் வழிப்புறி வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்லை பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார் மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவங்க அப்போ இருந்த இப்போ இருக்க முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் 21 அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்போ கைது செய்யப்பட்டார்.
1: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a women relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
6: ये हमें ये हम सब जानते हैं ये कि सिर्फ भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है. चाहे वो महिला काम करने वाली हो या वो सफल हो या वो नेत्री हो या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है. और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है जिस तरह से भी वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है. तो इस तरह की जो है ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं.
1: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the

0: mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are seven people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
1: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least seven people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
2: रात को 12 बज के दो तीन मिनट में हुआ होगा, मैं खाना खा के सोने वाली थी, तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का। तो उसके बाद है ना, मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था तीन चार ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया। बेलकोनी में यहाँ पर दो लड़के खड़े थे, तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक। अच्छा, तो अंदर क्या हो रहा है, मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है। उसके बाद है ना पीछे से देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से तीन चार लड़के जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं अंदर चले गए और थ्री मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए।
3: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
4: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म। प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विथ फाइटिंग।
5: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and yeah. We want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
6: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार उनसे बात करते हैं। सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
7: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे। उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई।
6: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
7: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और एक माइनर अप्रिहेंड कर चुके हैं। वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे।
0: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted

0: faulted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
1: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया, 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
0: And with that, it's time for us to slip in over a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
2: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
3: So many attacks.
2: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right, and Center.
2: Hard facts.
3: War struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine.
5: In France. In Italy.
3: At Srinagar.
5: Hi, Mr.
3: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
6: Launch control 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: This burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
11: Who failed? And this remains a campaign here on NDTV.
10: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.